ब्रह्म जन्म जन्म पार्वम एक अपने कछ परम सह सण पल ना जाइए नानक ऐसा गुरबट भागी पाई है सब दर्शन पेख पनी।

तन के भीतर पांच लुटेरे डाल रहे हैं डेरा। ये कौन है पांच लुटेरे जो दिन रात हम सबको लूटा करते हैं, और इन पांचों लुटेरों को हम खूब खिलाते पिलाते रहते हैं, इनकी सेवा करते रहते हैं और ये हमको लूटते रहते हैं। तो इन्हें पहचानिए, इनसे दूर रहिए, नहीं तो सब लूट के ले जाएंगे।

अंतिम पंक्तियां हैं और हमारे आपके जीवन में, सबके जीवन में बचपन से लेके बुढ़ापे तक जो होता है, जो गुजरता है, वो इन चार पंक्तियों में उतार दिया गया है।

re va re jan jan re da ni da ba ni va va ni da re ni da ka ka ka संतूर पर रोहन खत्री संगत कर रहे हैं। अब इनका कमाल देखिएगा, मैं जो सरगम गाऊंगा ये आपको संतूर पे बजा के सुनाएंगे।

तन के भीतर पांच लुटेरे डाल रहे हैं डेरा। ये कौन है पांच लुटेरे जो दिन रात हम सबको लूटा करते हैं, और इन पांचों लुटेरों को हम खूब खिलाते पिलाते रहते हैं, इनकी सेवा करते रहते हैं और ये हमको लूटते रहते हैं। तो इन्हें पहचानिए, इनसे दूर रहिए, नहीं तो सब लूट के ले जाएंगे एक दिन।

अंतिम पंक्तियां हैं और हमारे आपके जीवन में सबके जीवन में बचपन से लेके बुढ़ापे तक जो होता है जो गुजरता है वो इन चार पंक्तियों में उतार दिया गया है।

संतूर पर रोहन खत्री संगत कर रहे हैं। अब इनका कमाल देखिएगा, मैं जो सरगम गाऊंगा ये आपको संतूर पे बजा के सुनाएंगे।